0: किसी डिश के ऊपर फैलाना भी बहुत अच्छा तासुर देता है। मिर्च के पत्तों को सार्डिन काबायाकी के ऊपर डालिए और लीजिए, डिश तैयार है।
1: 今年の土用の丑の日にはぜひ皆さんもイワシのかば焼き
2: を食べて、ラバサールベルケデンパーサーディンカバヤキ खाना आपको गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने में मदद देगा। और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट कैच ऑफ द डे का, जिसमें हम आपको खाना पकाने से मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं। आज हम बात करेंगे दोयो दौरानिये के दोयो नो उशी नो ही, जिसे बैल का दिन भी कहा जाता है। वैसे गुल साहब, जब आप ये नाम बैल का दिन सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है?
0: सोफिया साहब, मेरा ख्याल है कि ये मौसम गर्मा और उनागी यानी बाम मछली से मुतल्लिक है, क्योंकि हर साल इस दिन में उनागी रेस्तरानों और डिपार्टमेंट स्टोर्स के बाहर में बड़ी तवील कतारें देखा करता हूं।
2: बजा फरमाया गुल साहब आपने, लेकिन दर हकीकत दोयो दौरानिया बैल का दिन महज मौसम गर्मा में नहीं होता।
0: अच्छा।
2: 1872 तक जापान में वक्त का अंदाजा लगाने के लिए शमसी कमरी कैलेंडर राइज था। उस कैलेंडर में हर मौसम यानी बहार, गर्मा, खिजा और सरमा के आखिरी 18 दिनों को दोयो कहा जाता था और उसे आने वाले मौसम की तैयारी का दौरानिया ख्याल किया जाता था।
0: सामिन, मौसम गर्मा का दोयो साल का गर्म तरीन वक्त होता है। तकरीबन 250 साल कबल एदो दौर में गर्मी की शिद्दत से होने वाली थकान को दूर करने और दोयो दौरानिया के डे ऑफ द ऑक्स यानी बैल के दिन पर होने वाली बीमारी से बहाली के लिए कुछ सेहत बख्श इकदाम करना काफी मारूफ हो गया था। जापानी हरूफ तहजी के हर्फ ऊ से शुरू होने वाली किसी चीज को खाना भी अच्छा समझा जाता था, क्योंकि दी ऑक्स या उशी भी ऊ से शुरू होता है। और हुआ कुछ यूं कि फिर उस दौर में उनागी काबाया के प्याला खाना बहुत मकबूल हो गया। गाढ़ी काबाया के सॉस का नमकीन और मीठा जायका उनागी के साथ जबरदस्त लगता है। ये गजाइत से भरपूर होने के साथ साथ उनागी की मट्टी जैसी महक को भी दूर करता है। आजकल जब लोग उनागी के बारे में बात करते हैं तो काबायाकी फौरन जहन में आता है।
2: उनागी में हयातीन यानी विटामिन्स की बड़ी मकदार मौजूद होती है और जापानी अफराद आला दर्जे की गजाइत के हामिल एक डिश के तौर पर गुज़िश्ता 1000 साल से इसे खा रहे हैं।
0: जी, आज के दौर में भी बहुत से गजाइत भरे खाने दस्तियाब हैं, लेकिन जापानी अफराद अभी भी मौसम गर्मा में उनागी काबायाकी खाने के मुंतजर रहते हैं। उनागी काबायाकी जापानी अफराद के लिए एक रिवायत बन गया है।
2: सामिन, अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे जापानी खाने पकाएं। उम्मीद है आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे।

0: गुल, वैसे वतनाबे साहिबा ने बड़ा अच्छा मुतबादल इस्तेमाल किया है बा मछली का, क्योंकि सार्डिन भी गजाइयत से भरपूर होती है।
1: जी सोफी, और आपको तो पता ही है कि बाम कितनी महंगी होती है और सार्डिन तो इंतहाई मुनासिब कीमत पे मिल जाती है और जापान में रोजमर्रा के खानों में इस्तेमाल होती है, इसलिए तो सारा साल दस्तयाब होती है।
0: जी गुल, और दूसरे कई ममालिक में भी इंतहाई आसानी से दस्तयाब होती है।
1: अच्छा ये बताएं कि अगर ना मिले तो फिर आज की डिश बनाने के लिए कौन सी मछली इस्तेमाल की जाए?
0: कोई बात नहीं, वही मछली यानी के बाम इस आसानी से अगर आपके मुल्क में दस्तयाब है तो इसे इस्तेमाल करें, जिसके नेमल बदल के तौर पर सार्डिन को इसके की ये डिश तैयार की गई है।
1: अच्छा, फिर तो बड़ी ये बेहतरीन सी डिश बन जाएगी ना?
0: बिल्कुल वही डिश बन जाएगी। और गुल, अगर दोनों में से कोई भी ना हो तो कोई भी दूसरी मछली मिसाल के तौर पर हॉर्स मैकरल वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है।
1: अच्छा चले, मछली का मसला तो हुआ हल
0: जी।
1: और चावल भी आप हमेशा बताती हैं कि जो चावल भी आप सामिन के इलाके में आसानी से दस्तयाब हो उसे थोड़ा सा नरम करके पका लें,
0: बिल्कुल
1: खिचड़ी के अंदाज में। तो ये ठीक ठीक सबक बताया ना मैंने आपको,
0: खिचड़ी के अंदाज में नहीं थोड़ा सा नरम,
1: थोड़ा सा नरम कर लिया। अच्छा, खिचड़ी ज्यादा नरम होती है क्या?
0: खिचड़ी ज्यादा नरम हो जाएगी। अच्छा, नहीं
1: चलिए।
0: इसके अलावा गुल, पोटैटो स्टार्च ना मिले तो कॉर्न स्टार्च से भी काम चल जाएगा। मैं भी अक्सर पोटैटो की जगह कॉर्न स्टार्च इस्तेमाल कर ही लेती हूँ।
1: अच्छा चलिए, ये तो हो गए जनाब नेमुल बदल अज्जा।
0: बिल्कुल,
1: और बाकी अज्जा तो हर जगह बहुत आसानी से दस्तयाब होते हैं, तो हमारे सामने ये डिश मेरा ख्याल है कि बना ही लेंगे अब तो।
0: बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। एक चीज भूल गए आप।
1: अच्छा कौन सी?
0: सांशो या पेपर लीव्स।
1: ओहो, ये तो भूल ही गया। अच्छा, अगर इसे ना भी सजाया जाए तो काम तो चल जाएगा ना?
0: वो तो ठीक है, लेकिन कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी खुशबू से किसी डिश में चार चांद लग जाते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे पुदीना, धनिया वगैरह हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। मछली के साथ सोया एक हर्ब होता है जो हमारे यहाँ और कई मुल्कों में पाया जाता है, और मछली के साथ इसका बड़ा अच्छा इम्तिजाज होता है।
1: अच्छा, यानी आप कहना चाह रही हैं कि अगर आज की तरकीब में सोए को

0: शो की जगह डाला जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। और गुल, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे सामने गर्मियों में ये डिश जरूर बनाएंगे।
0: जी अगर बनाए तो हमें जरूर बताइएगा।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
3: जी सामाई, प्रोग्राम आपने सुना और सुनकर यकीनन आपका बेखाबाया के दोन खाने का दिल चाहने लगा होगा और मुंह में पानी भी आ रहा होगा। वैसे जब हम छोटे थे तो अम्मी कहा करती थी कि मछली की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में मछली कम खानी चाहिए। और वैसे भी गर्मियों में गोश्त या मछली से ज्यादा सब्जियां या हल्के फुल्के खाने खाने को दिल चाहता है। लेकिन जनाब, जापान में मछली हर मौसम में यकसा मकबूल है और मौसम के मुनासबत से इन्हें खाने का एहतमाम किया जाता है। जैसे अनागो खाबाया के दोन, जिसे मौसम गर्मा के एक खास वक्त में खाया जाता है और मौसम गर्मा की खोई हुई ताकत को बहाल किया जाता है। इसी तरह से साम्मा या पैसिफिक सौरी मछली को मौसम खिजा में खाया जाता है। इसकी वजह ये समझ में आती है कि इन खास दिनों में ये मछलियाँ अपनी गजाइत और जायके के उरुज पर होती हैं। तो आप भी अपने इलाके में दस्तियाब अज्जा से खबैया की दोन जरूर बनाएं और मौसम गर्मा की थकान को भगाएं और हमें भी बताएं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।